जैसे रोके रखना है, जब मुसीबतें आती है तो किस चीज से रुक जाना है, जुबान को रोकना है और बदन को रोकना है। जुबान को किस चीज से रोकना है, शिकायत से रोकना है, बदकलामी से रोकना है, ऐसे अल्फाजों से रोकना है जो इंसान को हलाक कर देती हैं, जहन्नम की तह तक पहुंचा देती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज लोगों के मुंह से एक कलिमा निकलता है, एक कलिमा, एक लफ्ज, उसे वो कलिमा जहन्नम की तह तक पहुंचा देता है। और एक रिवायत में है, ला युल्की लहा बालन, बस कह देता है, जुबान से निकल गई, उससे परवाह नहीं होती वो क्या क्या कहना चाहता है, बगैर सोचे समझे बात कर ली, ऐसा कुफरी लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, जो कुछ वो कर चुका है सब पे पानी फिर जाता है, सब अकारत हो जाता है, जहन्नम की तह तक पहुंच जाता है। और बाज लोगों पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, कहते हैं क्या अल्लाह ताला सिर्फ हमें देखा हुआ है, हम पर जुल्म हो रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला जुल्म करता है किसी पर, वला यज़्लिमु रब्बुका अहदा, वो अजीम, वो करीम, वो रहमान, वो रहीम रब किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह की कसम, अगर आज अल्लाह तक रहमत ना होती इस जमीन के ऊपर, तो आज इंसान तो क्या, ये कीड़े मकोड़े भी जिंदा ना होते। अल्लाह ताला की रहमत है, कायनात का निजाम अदल और रहमत पर चलता है। और जिस्म को रोके रखना है जज़ा से, तमाचे मारने से, गिरेबान फाड़ने से रोके रखना है। और सब्र कब किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस-सब्र इंद सदमति अल-उला, जो ही बुरी खबर मिलती है, मुसीबत की खबर जो ही मिलती है, फौरन सब्र करना है। यही इम्तिहान है इंसान का, मोमिन का इम्तिहान है। आपके दिल के अंदर जो कुछ भी है उसी वक्त आपके जुबान से निकलेगा और आपके बदन पे उसका असर होगा, याद रखें। अगर दिल में ईमान है, यकीन है, तक्वा है, अल्लाह ताला का डर है, तो जुबान से निकलेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर यह चीजें ना हो तो फिर वही ऐसे कलिमात निकलते हैं जो जहन्नम की तह तक पहुंचा देते हैं। और बदन से क्या करना है, सब्र करना है, सब्र। ये तीन हिस्से हैं सब्र के, तक्वा क्या होता है, अगर सब्र तीन हिस्सों का मजमुआ है तो तक्वा चार हिस्सों का मजमुआ है। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तक्वा का मायना الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو, العمل بالتنزيل, جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث, جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اس پر عمل کرنا, دعویٰ نہیں کرنا زبان سے, العمل, عمل کرنا, العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں ہی برکت ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دیں, کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی.